0: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
1: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, तू किस तरह टप आया।
0: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
2: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
0: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
3: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
0: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
4: चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
5: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविख की शुरुआत करो हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वादू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है
3: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उहनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: वाओ, तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
4: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है।
3: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
5: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
3: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
6: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
3: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।

0: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
1: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, तू किस तरह टापा है।
0: अते एक बार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
2: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
0: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
3: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
0: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्कनामा।
4: अटेंशन ट्रैवलर्स, The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
5: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
6: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
7: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
8: हां जी रेडियो

0: आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी तां ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नूं, लीगल वालियां नूं इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: Are you ready?
5: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान। बिल्डिंग टिम्बर, पावर एंड हैंड टूल्स, स्लीपर, हार्डवेयर, डेकिंग, सेफ्टी एंड वर्कवेयर, विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ, सब एक ही थां उत्ते। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने। ए क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स, तुहाडी हर बिल दा ट्रस्टेड पार्टनर। कमिंग सून, पता चलेगा इत्थे ही। सुनदे रहो रेडियो हांजी, मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया। त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले इत्थे दे रहा है। तुसी इत्थे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी इत्थे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया, त्रुगनिना विच।
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जा वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਡਕੈਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ।
3: ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ।
2: ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਕਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ।
3: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 04-91-999-555। शर्ता लागू। हाँ

0: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
1: Are you ready?
2: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल्ड दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान बिल्डिंग टिम्बर पावर एंड हैंड टूल्स स्लीपर हार्डवेयर डेकिंग सेफ्टी एंड वर्कवेयर विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ सब एक ही ठाउं ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने ए क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स तुहाडी हर बिल्ड दा ट्रस्टेड पार्टनर कमिंग सून पता चलेगा इत्थे ही सुनदे रहो रेडियो हांजी
3: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
4: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
4: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
6: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी
7: हाँ जी रेडियो

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: चलदी दा नाम गड्डी, हाँ ते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले, याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: अटेंशन ट्रैवलर्स, The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, delay in law is damage in life. फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: आज ही पहुंचो ऑबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 0433-280-252 ते।
1: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
3: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा। ते तू किस तरह टपा है?
2: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
4: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
2: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
5: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
2: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं फिल्म इश्कनामा।
6: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी तां ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नूं लीगल वालियां नूं इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
8: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
0: फिर लवाइए किथों?
8: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
9: टेंशन मेरी टेंशन
0: की होया?
9: एथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
10: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमीग्रेशन नू जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
9: या 90-77-97-33
10: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
9: याद रखो 9077-9733।
10: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
9: हर कदम तुहाडे नाल।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
11: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
0: सोना चाहिदा,
12: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
13: Are you ready?
0: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान। बिल्डिंग टिम्बर, पावर एंड हैंड टूल्स, स्लीपर, हार्डवेयर, डेकिंग, सेफ्टी एंड वर्कवेयर, विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ, सब एक ही थाउ पे। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन सोना चाहिदा
3: भरोसा चाहिदा
2: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
4: Are you ready?
5: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान बिल्डिंग टिम्बर पावर एंड हैंड टूल स्लीपर हार्डवेयर डेकिंग सेफ्टी एंड वर्कवेयर विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ सब एक ही था उत्ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने ए क्लास बिल्डिंग मटीरियल तुहाडी हर बिल दा ट्रस्टेड पार्टनर कमिंग सून पता चलेगा इत्थे ही सुनदे रहो रेडियो हांजी

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
2: हाँ जी रेडियो।
3: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़ी नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तो हाड़े बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउन लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tyreforce.com.au।

0: price guarantee with an industry-leading 24-month price lock. Aaj hi pahuncho Orbit Homes Display Centers ya call karo Harpan Chauhan nu 0433-280-252
1: बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
2: फिर लवाइए कित्थों
1: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 थे।
3: Are you ready?
4: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान बिल्डिंग टिम्बर पावर एंड हैंड टूल्स स्लीपर हार्डवेयर डेकिंग सेफ्टी एंड वर्कवेयर विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ सब एक ही ठाउं ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने ए क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स तुहाडी हर बिल दा ट्रस्टेड पार्टनर कमिंग सून पता चलेगा इत्थे ही सुनदे रहो रेडियो हांजी
5: अटेंशन ट्रैवलर्स The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.

0: सच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है।
1: नई गजल के पोएट हैं अब्दुल हमीद आदम मरहूम, तो उनकी गजल पेश कर रहा हूं। सर

आप समझ तो गए होंगे कि मैं समझाऊं। हाँ बोलो, मेरा ख्याल समझ गए। हाँ चलो अच्छी बात है। है हुस्न का फुसों भी इलाज फिसुर्दगी, रुख से नकाब उठा कि तबीयत उदास है। हुस्न वाले को कहा जा रहा है कि ये इलाज है फसुर्दगी का, बेचारगी का, बीमारी का। बेचारगी बीमारी को नहीं कहते, लेकिन बेचारगी और कई तरह की होती है। हाँ उसका इलाज भी है इसमें।

0: Thank you.
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
4: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: Are you ready?
7: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान। बिल्डिंग टिम्बर, पावर एंड हैंड टूल्स, स्लीपर, हार्डवेयर, डेकिंग, सेफ्टी एंड वर्कवेयर, विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ, सब एक ही थां उत्ते। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने। ए क्लास बिल्डिंग मटीरियल्स, तुहाडी हर बिल दा ट्रस्टेड पार्टनर। कमिंग सून, पता चलेगा इत्थे ही। सुनदे रहो रेडियो हांजी।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाडे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
1: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
2: की होया
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410 530 530
1: या 90 77 93 33
2: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077973।
2: VY Immigration and Education Consultant,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
0: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी तुहाडे ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
4: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
5: हाँ जी रेडियो।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपनी हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच। चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-655 और विजिट tireforce.com.au।
1: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
2: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा ते तू किस तरह टप आ।
1: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
3: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
1: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
4: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
1: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्क

0: किचन का स्टाइल डल लग दा बाथरूम वैनिटी सिंपल जया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ कर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
1: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
2: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो visit goldleafdairy.com

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
1: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: हाँ जी हाँ जी।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
2: हां जी रेडियो

0: ਓਪਿਟ ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ। ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਓਪਿਟ ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ 44 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਿੰਗ 24 ਮੰਥ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੌਕ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਓਪਿਟ ਹੋਮਸ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 04332802052 ਤੇ 04332802052।
1: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 04105305003
3: या 9077993
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077973।
4: Viva Immigration and Education Consultant,
3: हर कदम तुहाडे नाल।
0: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
0: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। फॉर मोर इनफो कॉल 04992535 45 ते।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी रेडियो।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उन्हां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होवे असगा, नानक भगतां सदा विगा, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाय, जे को कह पिछे पछताय, कागद कलम ना लिखना।

जाने मन कोय, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल भवन की सुध, मनै मोचो टाने खा, मनै जाम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मनै

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए ओ जाने।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्रीमुख वागपात सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कहि जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

नंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रपाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुख प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तं निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग प्रछंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तं निनाथे नमस्तं परमाते नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अकाले नमस्तं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तं प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकुदा एकाम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनार।

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस आदिष्टे तर्म सर्वां परिणांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगंज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बे अब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानिए के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदा में गनी बुल शिकस्ते गरी बुल प्रस्ते मुलंदर मुकाने जमीन जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क हिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तों पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाह स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चात्री छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪ੍ਰਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸੁਨਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਨ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਾਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਤਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਵਾ ਏ ਕੈ ਸਦਾ ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ।

अंठन अपार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है तृत के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए श्राव समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपुत अंधको नांगे पाएं बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे पूत पवेख पवान के पुपुत कौन कने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सुबह सुबिचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा नज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करो रक्षा राख लो।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पैदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिखु बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

तिना सुमाणी पीवो अमृत सदारो हर रंग जपो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

मैं नहीं माखन खायो। तो बस कन्हैया ने सोच लिया, अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तक दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहां है।

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे

नहीं चला यह तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं।

मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई,

नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं।

कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा।

मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी।

मैया, दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं, दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने ही शब्दों में

नमस्कार, सुप्रभात, जय शंकर की। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। तो श्रावण मास चल रहा है और उसके सोमवार पर आज दूसरा सोमवार है सनातनी कैलेंडर के अनुसार से। तो सोमवार के दिन, वो भी श्रावण मास में, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की, उनका अभिषेक करने की परंपरा रहती है। हम सभी ने शिवलिंग अवश्य देखा है, किंतु कुछ लोग शिवलिंग का अर्थ समझे बिना कई तरह की भ्रांतियां अपने मन में बिठा लेते हैं, जो कि गलत है। इसलिए इस विषय को समझने का सही तरीका है कि शिवलिंग को किसी शारीरिक दृष्टि से ना देखकर इसका एक अलग दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए। अधिकांश लोगों के मन में शिवलिंग को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति है। वे शिवलिंग को केवल भगवान शिव के जेनिटल पार्ट के रूप में देखते हैं, किंतु सबसे पहले हमें लिंग शब्द का अर्थ समझना होगा। संस्कृत में लिंग का अर्थ सिर्फ शरीर का कोई अंग नहीं होता, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, लक्षण, संकेत या किसी वस्तु की पहचान कराने वाला स्वरूप। श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव के विषय में बताया

गया है कि वे विभिन्न भौतिक तत्वों के विशेष लिंग रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए आकाश लिंग, ज्योतिर्लिंग आदि का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में मिलता है। अर्थात यहां लिंग का अर्थ किसी शरीर के अंग से नहीं, बल्कि भगवान शिव के एक विशेष प्रकट का स्वरूप है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख आता है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर प्रकट हुए। अब इनकी कथाएं अगर लेने बैठे तो एक सोमवार क्या पूरा महीना ही सावन का कम पड़ सकता है। तो अभी फिलहाल हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और इनका स्थान जानेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। अभी लखविंदर लखा की आवाज में आपने सारे ज्योतिर्लिंगों के नाम तो अवश्य सुन ही लिए, किंतु इनकी कथा, इनके पीछे कथा क्या है, वो आपका दास आपके लिए लेकर आया है। तो श्रवण के माध्यम से हम करेंगे पावन 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज हम कितने कवर कर सकते हैं, उनके पुण्य दर्शन। हमारी अगर यात्रा शुरू की जाए तो वो गुजरात से शुरू करते हैं, जहां के सौराष्ट्र क्षेत्र में भगवान शिव सोमनाथ के रूप में विराजमान हैं, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कथा के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं से विवाह किया था, किंतु उनमें से रोहिणी के प्रति उनका प्रेम विशेष था, या कह लीजिए आकर्षण था। इससे उनकी अन्य पत्नियों को बड़ा दुख महसूस होता था कि चंद्रदेव हैं, हमारी ओर तो ध्यान दे ही नहीं रहे। इससे नाराज होकर उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की कि चंद्रदेव केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते हैं, हमारी तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दिया, हे चंद्र, लगता है तुम्हें अपने तेज और सौंदर्य पर अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम्हारा तेज और सौंदर्य समाप्त हो जाए। शाप के चलते चंद्रदेव का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक वरदान दिया। वो बोले कि दक्ष प्रजापति के शाप को तो मैं नहीं काट सकता, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं चंद्र, जो प्रकाश तुम्हारा धीरे धीरे कम हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसी के चलते हमने सब ने देखा है कि चांद धीरे धीरे पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे घटने लगता है, और फिर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चंद्रदेव के प्रति अपनी करुणा के कारण भगवान शिव यहीं पर सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में स्थित हुआ और चंद्रदेव ने स्वयं सबसे पहले इसकी पूजा की। आज भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है, तो कभी मौका मिले तो अवश्य दर्शन कीजिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के। अब सोमनाथ के बाद अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, जो श्री शैलम में स्थित है। यह है आंध्र प्रदेश के श्री शैल पर्वत पर। इस ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब कार्तिकेय दक्षिण दिशा में चले गए, तब भगवान शिव अपने पुत्र को देखने के लिए श्री शैल पर्वत पर पहुंचे। अपने पुत्र से मिलने के बाद भगवान शिव ने वहीं निवास किया और भक्तों के कल्याण के लिए मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज भी आंध्र प्रदेश में इस ज्योतिर्लिंग पर लाखों श्रद्धालु अपना माथा टेकने आते हैं और अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगले ज्योतिर्लिंग पर जाने से पहले हम लेते हैं छोटा सा विराम। मैं यूं गया यूं आया, आप सुनते रहिए ये सुंदर सुंदर शिव भजन। आगे कौन सा ज्योतिर्लिंग आने वाला है, इसके लिए सुनते रहिए पुण्य दर्शन अपने दास के साथ।

0: यार भाई तू तो फेल हो गया यार।
1: क्या?
0: हाँ फेल। चल अब पास होने वालों को भी आने दे।
2: हेलो।
0: हाँ पापा।
2: रिजल्ट क्या रहा बेटा?
0: फेल हो गया हूँ पापा।
2: मुझे पता था तुम ऐसे ही मेरे पैसे बर्बाद करोगे। तुमसे होना जाना कुछ भी नहीं है।

0: भैया रिजल्ट चेक करना।
1: शाबाश, तुम तो फेल हो गए।
2: मुझे पता था तुम ऐसे ही मेरे पैसे बर्बाद करोगे। तुमसे होना जाना कुछ भी नहीं है।

0: एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है।
1: मानव, शिवलिंग पर सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से तुम पास नहीं हो पाओगे। जितने सच्चे मन से तुमने शिव पर विश्वास किया, क्या तुम्हारा कर्म भी उतना ही सच्चा था? याद करो क्या क्या गलतियां की।
2: बोले बाबा, पढ़ाई थोड़ी सी कम रह गई है, इस बार संभाल लेना।
3: अरे ये देख
2: चल भाई, बहुत सारे टॉपिक बचे हैं यार मेरे।
3: अरे भोले नाथ जी, सब संभाल लेंगे, एक इनिंग और देख के जाओ।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो श्रवण के माध्यम से चल रही है हमारी यात्रा 12 पावन ज्योतिर्लिंगों की तरफ। श्रवण मास में शिव भोले के वो पवित्र स्थान जहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए ज्योतिर्लिंगों के रूप में। तो सोमनाथ और मल्लिका अर्जुन के बाद अब अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में आता है। उज्जैन में एक अत्याचारी असुर था, दूषण। वह वैदिक कर्मों और ब्राह्मणों का विरोध करता था तथा लोगों को अत्यंत कष्ट देता था। वहां भगवान शिव के भक्त भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। जब दूषण ने उन्हें परेशान करना शुरू किया तब भक्तों ने भगवान शिव को पुकारा। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव महाकाल के भयंकर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से उस असुर को भस्म कर दिया। भक्तों और देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव उस समय से वहीं पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और यहां की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग, भक्त, श्रद्धालु इस भस्म आरती को देखने के लिए पहुंचते हैं और अपनी हर इच्छा, हर मनोकामनाएं भोलेनाथ से पूर्ण करवाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो अगला जो हमारा ज्योतिर्लिंग है वो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है मध्य प्रदेश में। शिव पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव ने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके यहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर निवास किया है। ओंकारेश्वर का संबंध पवित्र ओमकार से भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव ने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट किया यहां पर। मान्यता के अनुसार ये श्री राम से भी पूर्व पीढ़ियों के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। यहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तीन बातियों वाला दीपक सदियों से प्रकाशमय है। कहा जाता है कि यहां पर भगवान शिव विश्राम करने, शयन करने आते हैं। और यहां पर सबसे अनोखी जो बात है वो है मां नर्मदा। देश की सभी नदियां, भारत भूमि की जितनी भी नदियां हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, किंतु

तो हमने 12 ज्योतिर्लिंगों में से गुजरात के सोमनाथ, श्री शैलम आंध्र प्रदेश के मल्लिका अर्जुन और मध्य प्रदेश उज्जैन के महाकालेश्वर और मध्य प्रदेश में ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कर लिए हैं पुण्य दर्शन श्रवण के माध्यम से। अब आगे के ज्योतिर्लिंगों का पुण्य दर्शन करेंगे हम अगले सोमवार यहीं पुण्य दर्शन में। आप सब पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं और आप सब से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी नित भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगाए रखूं, आपके लिए ज्ञान के मोती चुन चुन कर आप तक पहुंचाता रहूं। और फिर भी कोई आपका कोई सुझाव या कोई मैसेज या कोई प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं यथासंभव उत्तर खोजने का प्रयास अवश्य करूंगा यही पुण्य दर्शन में। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आज का पुण्य दर्शन हम यहीं पर विराम देते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार, बम बम भोले। हाँ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: स्मिथ लेन बाय मोलेक विच अपने भविष्य की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते स्मिथ लेन दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वालों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है, अजे ही मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
4: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
5: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल।

0: मुझे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: अटेंशन ट्रैवलर्स, The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविष्य की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय लई मिलण वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करण ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है, अजिहे मौके ज्यादा देर नहीं रहिंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
4: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
5: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
6: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 04935360042।
8: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
9: अटेंशन ट्रैवलर्स, The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
10: ਟਿਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
11: सिर्फ फिल्मी नहीं, ए है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
10: जदो ए जोकर तख्ते बैंदा है तां ओह राजा नहीं बनदा, ओह पूरे राज नूं सर्कस मना लैंदा है।
11: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सधवानी अते होर कई साथी कलाकार, 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
8: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक
7: ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ। ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਓਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ 44 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਿੰਗ 24 ਮੰਥ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੌਕ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਓਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 0433-280-252 ਤੇ 0433-280-252 ਤੇ।
12: ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
13: ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪਾ ਹੈ।
12: ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਮਾਸ਼ੂਕ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਨੇ।
14: ਬਾਗੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
12: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਭਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਨਾਮਾ।
15: ਰਾਂਝੇ ਦਿੱਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
12: ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविष्य की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है, अजिहे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।

0: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
1: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, तू किस तरह टप आया।
0: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
2: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
0: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
3: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
0: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई।

0: सब लाई बिदा दी दे रुआ दे सब को मन साथी भाई आंसू झार छन रुआ दे सब को मन के नहीं छयो जीवन मा दुख बाहे जन गुरु बाबा उने
1: पहाड़ क्या रखा है इन पहाड़ों में। वाकई इस गाने से आपको पता लग गया होगा, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, वो सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि हमें सिखा देते हैं ज़िंदगी की सीमाएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम मन में बना लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान की, निर्मल पूर्जा जी, या कहें जो निम्स दाई के नाम से मशहूर है। दाई नेपाली में बड़े भाई को कहते हैं। निम्स दाई एक ऐसा नाम जिसने पहाड़ों को सिर्फ चढ़ा नहीं बल्कि दुनिया को ये यकीन दिला दिया इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है। निम्स दाई ने दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी चोटियों को महज 6 महीने और 6 दिन में फतेह किया। लेकिन उनकी असली कहानी सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं है, और ये कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है कि जो पहली बार किसी ने तोड़ा हो। ये रिकॉर्ड पहले भी तोड़ा गया है। 14 चोटियों को पहले भी फतेह किया है, लेकिन उन्हें करने में लगे थे 8 साल और निम्स दाई ने मात्र 6 महीने और 6 दिन में इसे फतेह कर लिया। अपनी ज़िंदगी में निम्स दाई नेपाल में जन्मे और यूके की गोरखा रेजिमेंट में इन्होंने नौकरी की। वहाँ से लेके दुनिया के सबसे मशहूर माउंटेनियर में शामिल होने तक का सफ़र, उन्होंने डर को बार बार पीछे छोड़ा और खुद से कहा मैं कर सकता हूँ, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत रही है। लेकिन पहाड़ों से दोस्ती करने वाले निम्स दाई को आखिरी यात्रा भी पहाड़ों के बीच में ही हुई। 31 जुलाई को पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर एक भयानक अवलांच आया और निम्स दाई समेत कई क्लाइंबर इस त्रासदी का शिकार हो गए। सोचिए, एक इंसान जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को चुनौती दी, जो मौत के बेहद करीब जाकर भी अपने हौसले को नहीं छोड़ पाया, आज वही इंसान हमारे बीच नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग मरते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ अपनी कहानियों में जिंदा रहते हैं। निम्स दाई की कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए हमें सिर्फ अपने डर से लड़ना होता है। आज पहाड़ खामोश है, लेकिन निम्स दाई की कहानी बोल रही है। निम्स दाई आपने सिर्फ पीक नहीं जीती, आपने बल्कि लाखों दिलों की को जीता है। आपने लाखों सपनों को ऊंचाइयां नापना सिखाया है। आपकी आखिरी चढ़ाई पले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन आपकी कहानी हमेशा पूरी रहेगी। पता नहीं निम्स दाई का ये जाना इतना पर्सनल क्यों लग रहा है। मे बी बिकॉज वो सिर्फ माउंटेनियर नहीं थे, वो एक ऐसा नाम थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया अपने डेडिकेशन से, अपने डिसिप्लिन से। उनकी कही ये लाइनें हमारे साथ या आने वाली हमारी सारी जनरेशन के साथ हमेशा रहेगी। गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर, नॉट इन द ब्लड। निम्स दाई ने इम्पॉसिबल को सच में पॉसिबल करके दिखाया। उन्होंने जितना हम सोच भी नहीं सकते एक ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी के लिए, उससे ज़्यादा अपने आप को पुश किया, और शायद दैट्स वाई इट हर्ट्स मोर। और जब कोई अपने पैशन, अपने ख्वाब को जीते हुए जाता है ना, इट हर्ट्स इवन डिफरेंटली। इनके जैसे और भी लोग हैं जो जिन्होंने कोशिश की और अपनी लिमिट्स को पुश करा, और आज हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारी लिमिट्स, हमारी बाउंड्री को पुश कर सकते हैं। वी डेफिनेटली लॉस्ट अ जेम, एंड एवरी सोल हु लॉस्ट देयर लाइफ परस्यूइंग देयर पैशन